0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकड़ो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदाने जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्था दे विच शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। या गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना कदा खिचण फिर आपां सीधे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो। माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु के वचना के उत्ते पहरा दिता है एक एक वचन नूं कमाया है उन्हां नूं सतगुरु महाराज निहाल कर दिता है। हां जे कोई अवग्या हो जाती तो माफी मंग लो। यही दस्या है माफिया मंग लिया करो। सवेरे दुपहरे शाम रात महाराज तो माफी मंगते रहो। महाराज मेर करो सातों को गलती हो जाती है सौ गल्लां हो जांदियां ने सातों पूरी रहत नहीं कमाई जाती। हां थोड़े सिख ही आ पर नहीं कई बार साढ़े को ढिलाइया हो जाती ने। और सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो माफिया मंग लईए कि महाराज असं इन्ने योग नहीं हां सानू बख्श लो। इस तरह महाराज अगे हाथ जोड़ के बेनती करिए

0: ये पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यूं कहने समाधि ला ली, गुर चरणा में समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पढ़ सुने कलयुगता का दास।
0: जेड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा, ये साखी नु सुने, कलयुगों दा दास बन जाएगा।
1: पाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओदे भज जाणगे, भगती ओदे हिरदे जागेगी, तन है गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी, जेड़े गुरसिख होणगे। सो ऐसा महाराज ने वचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नु सोहना सुनाया इतिहास। आने वाला समा मुकदी गल मुकाईए बई, अमर छको दाड़ियां, जेड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहिंदे आपे ही शूद्र बन जांदे ने, आपे ही लोग तंबाकू जा पीण लग जांदे ने, आपे मलेश बन जांदे ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग दा। इको ही बचन कीता कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो, अमर छको गुरु वाले बनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नो। यही सोहना उपदेश।

0: एक तो जेड़े लोभी बंदा उहदे नाल प्रीति ना करो, मित्र ना बनाओ उहनू अपना, यह तो सारी दुनिया नू भी पता है। लोभी बंदे ते नहीं ठहरना, ना उहदे नाल गलबात करनी है। एक जेड़े पहाड़िए ने, यह पहाड़िया नू अपने मित्र ना बनाओ।
1: यार बरन सो बरते ऐसी सुनो सिख मन बचे जैसे।
0: चारे बरना दे नाल बरतना भी है। बरतना किवें है? कहिंदे इस तरह मेरा सिख चारे बरना।

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इसे तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै लई, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग पीठी ब्राह्मण दान न लागै।
0: होर जेड़े मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेड़े हुण आपां नूं मानदे ही नहीं गे गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जिहड़ा गुरु करदा है श्रद्धालु है प्रेमी है, किरत होर नहीं करदे, कई ब्राह्मण गुरु घर दे प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, वह तां इक गुरसिख है। भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जावे खंडे बाटे दा अमर छक लवे गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहीदा। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: सुपते निसमै सतगुर मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां नूं उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तां वी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तो है वह बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी। आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वो शुद्ध रूप में सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कवियां गुणियां ज्ञानियां पंडितां नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी दे वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कवियां दी जनरल नॉलेज देखदे ने किन्नी का है, किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते। कवियां दे ज्ञान नूं परखना, उन्होंने जवाब देने ने, उन्हां दे जिहड़े उत्तर ने उन्हां नूं सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं, असल विच इह गल इस तरह नहीं है, इह गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्हां नूं भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करदे हां प्यार सत्कार नाल, दसना करिए पवित्र गज के आ

0: सुपती निस मैं सतगुर मन भावत कर खान।
1: मन पाउंदा भोजन छक के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह

0: चेला होगा कोई वो अपने गुरु नु समझाया करेगा जा के नहीं गुरुदेव यह गल इस तरह तुसी हले बच्चे हो थोनू नहीं हले इन्हां गल्लां दा पता भाव हुण भी तो समझाउंदे ने आके हुण भी तो कह रहे गुरु ग्रंथ साहिब जा पिछौर सिंह ते प्यारा सिंह अरगे उठ खड़े हुए सी ते आ हुण होर ही खड़े दसम ग्रंथ के विरुद्ध होर गल्लां कर रहे ने इही जिहड़ा गल है ये कहने इन्हों नहीं पता है असल तो सानू पता साडियां बुद्धियां ज्यादा कम कर दिया ने सारी मर्यादा ही पुठी करती इस करके कहने कलयुग दे विच ऐसे कर्म होणगे ते अन्न पावन खाए ते अपवित्रता वाला अन्न खाया करनगे कहने इहदे खाण नाल तां दिमाग चलदा है जे ना पीए गाली नहीं चलता है कई तो इउं कहंदे ने वी गल मैं कहा तुसीं इह शराब पीने हो कोई बंदे सी आवें शराब पीने कहिंदा आवाज नहीं निकलदी यही तो गल साफ करने वाली चीज है
1: नहन तजे काया दुखी खावे बोर च पाए
0: इस करके कहने ने कलयुग दे विच कैसा होवेगा नहान तजे काया दुखी जे नहाउणा छड़ देणगे क्यों नहाउंदा क्यों नहीं बस एवं शरीर जा दुखी जिहे की नहा के लैणा है ते जे उहनू कहो आ रोटी खा लो आ होर चीजा खा लो कहिंदे किथे रोटी महाराज कहिंदे रोटियां खाण नू तकड़े होणगे कलयुग च चीजा खाई जाणगे सारियां जे कह दो इशनान कर लो फिर उत्थे डिग पिया करनगे मेरा तो शरीर नहीं ठीक है
1: प्रीत थोर खुश मत बचन उधर भरन के काज
0: कहिंदे प्रीति तो होवेगी नहीं लोकां दे विच होर की करनगे कहिंदे पेट भरन लई ना खुशामद करिया करनगे इहदे कोल सानूं खाण नूं मिलदा है जिथों खाण नूं मिलेगा उत्थे पैरी हथ तक लाया करनगे गोडी हथ लाउणगे यह बंदा बड़ा वधिया जिथों खाण नूं ना मिलिया करेगा उहनूं गालां कढ़िया करनगे
1: नारी मिलना भोग कब ग्रह ग्रह जजिए साज
0: बस इको ही गल मन दे विच होवेगी लोकां दे मनां अंदर कलयुग दे विच विशियां दी गल जे तां विशियां दी गल करो फिर तां जिथे गाउण वाले आउंदे ने आ गाने गाउण वाले गाने गाउण वालियां इस्त्रियां उत्थे दा बेअंत इकट्ठ हुंदा ते जिथे कोई भजन पाठ दी गल होवेगी उत्थों लोग भज्या करनगे जां इक होर कहिंदे ने जिवें सारा दिन बंदा बस विशियां नूं ही चित वी जाया करे कलयुग दे विच वी कदों रात पवे कदों विशियां च परिवर्तित होईए कहिंदे जिहड़े लोग कवि लोग होणगे उहनां दी जिहड़ी चंगी कविता होगी कलयुग दे विच लोग चंगी कविता नूं सुणिया नहीं करनगे कहणगे एवें फालतू गल्लां करदा जे उही कवि किसी इस्त्री की कविता सुना देवे विशियां बकारां दी भाव माड़े गाने जिवें अजकल चलते ने फलाना गा रहा है उत्थे लोग सुन जाया करनगे माड़े गाने ते जिथे कोई कविशरी हुंदी है गुरु घर की गल हुंदी है जिथे कोई ढाडी सिंह आउंदे ने इह कहिंदे एवें जकड़ियां मारदे फालतू इह झूठियां गल्लां करदे आ इह उहनां नूं नहीं सुणनगे लोग कि महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे फलाने तां फलाना गा रहा फलाने तां फलाना गा रहा इहनूं दो वी 50 लख रुपया करोड़ रुपया एक रात दे गाउण दा करोड़ रुपया लैंदे लोग जे कोई लोग बाणी पढ़न वाला होवेगा कोई कथा वाला कोई कीर्तन वाला भाई जी 151 बड़े आ उहनूं 151 251 उत्थे नाल एक रुपया जरूर लैणा उह जिहड़े थोड़े गाउण वाले आ उहनूं क्यों नहीं कहिंदे 5 लख एक रुपया लैणा उहनूं नहीं कहिंदे एक रुपये नाल क्योंकि उहदा निरादर हुंदा इस करके जिहड़े गाने गाउण वाले होणगे उहनां नूं लोग सत्कार दिया करनगे कहिंदा मेरे समें च जिहड़े लोग चंगे होणगे उहनां नूं लोग निंदिया करनगे इस करके कलयुग अपनी रीति दस रहा महाराज नूं कि मेरे समें च की वर्तारा वरतेगा आओ रसना नूं करिए पवित्र।

0: खुशामद बचन उधर परन के काज।
1: कलयुग सुना रहा है अपना प्रसंग, मेरे समय के अंदर की वर्तारा वरतेगा। प्यार तो लोगों का घट ही होगा आपस में, पर पेट भरन वास्ते लोग खुशामद करया करनगे।
0: नारी मिलना भोग कवि ग्रह ग्रह जजिए साजे।
1: भाव अर्थे देने के एक ता बस यही सारा दिन मन दे अंदर कोई राम नाम दी भगती दी गल नहीं आउणी, कोई उपकार दी गल नहीं, कोई सेवा दी गल नहीं, चज दी गल ता मन च आउणी नहीं। कलयुग विच बस जदों कदों मन च विषय विकार ही रहा करनगे लोकां दे, माड़ा देखना माड़ा सुनना माड़ियां गल्लां करनियां बस यही मन च चितवणगे कि कदों विषयां च परिवर्त होईए कदों रात होवे। कलयुग दे विच जिहड़े चंगे कवि होणगे उहनां नूं कहणगे तां एवें गल्लां मारदे ने, ते जिहड़े कवि गंदे गाने लिखिया करनगे गंदे गीत गाया करनगे गाउण वाले लोग उन्हां नूं कहणगे बंदा बड़ा गुड है, सब तो अच्छा आदमी है, इड्डी साडा ख्याल रखदा है, साडा मनोरंजन कीता है बंदे ने। इउं घरां घरां दे विच जा के लोकी गंदे गीत सुनाया करनगे, लोग उन्हां नूं सिहरे पाया करनगे वाह वी वाह इह बंदे ने असली गल कीती है। जिहड़ा नाम दी गल करेगा नाउ लए तिस बदनामी कल के लखण एही, नाम लैण वाले नी दुनिया बदनामी करेगी।
0: वेद बेच दे भेद धर भूम बेच दे छत्रे।
1: वेद धर जिहड़े ब्राह्मण होणगे कलयुग दे विच उह वेदां नूं बेचणगे, विद्या बेचणगे, सुना के कुछ ना कुछ लोगां दे ताईं पैसे लिया करनगे।
0: भूम बेच दे छत्रे।
1: जिहड़े छत्री लोग होणगे दुनिया दे अंदर वो अपनी धरती नूं बेचना शुरू कर देंगे।
0: घर घर बेचे बनिए बहुत शूद्र बेचते पुतले।
1: बाणी अपना घर बेचिया करनगे, शूद्र जिहड़े ने अपने पुत्र नूं वेच दिया करनगे, ऐसा समा आएगा।
0: भूखे मरते काम बिन भगवा करके भेक।
1: लोकां नूं काम दी इन्नी नहीं होएगी, कम्मां तों कतराउणगे, किहड़ा मेहनत करे किहड़ा कम करके खावे। इहदे नाल तां कहिंदे संत बन जांदे आ, भगवे कपड़े पा के भेख बना के भेख दिखाए जगत को लोगन को बस कीन, इउं लोक वधिया पूड़े खीरां खाया करनगे।
0: जड्डा बंद करते सुरस मृग छाला पर वेक।
1: फिर इस तरह करनगे बहुत सारे लोग कि जटां लंबियां लंबियां बना लिया करनगे, ते फिर मृगशाला जिहड़ी विछा लैणी, वेख कर लैणा अपना साधुआं वाला, अते विषयां च प्रवेश होणगे, देखण नूं संत महाराज होणगे, ते अंदरों कम जिहड़े ने ओह बाले भैड़े करिया करनगे।
0: लोकन को ऐसे कै संत संग है भाग।
1: लोगां नूं कहा करनगे भई तेरे तां बड़े वड्डे भाग है, तू संतां नाल आ के मिल गया, और कुकर्म इन्ने करया करनगे भई ये कहा करनगे मैनू संत जी कहो, ते कुकर्म करनगे संसार नूं गलत रस्ते लाउणगे, इस तरह दी दुनिया हौली हौली बन जावेगी।
0: आप नरक अवरन नरक करनी बने न लाग।
1: हुण आप भी नरकां नूं जाणा ते दूजियां नूं भी नरकां विच लै के जाणा, शुभ करनी नाल लगना ही ना बनेगा भाव, छोड़ भी नहीं ना चंगा आप कम करना ना दूजियां नूं प्रेरणा देनी, ऐसी दुनिया बन जावेगी।
0: लोकन तो बंचन करे कथे ज्ञान की बात।
1: बंचन हुंदा ठगना, लोकां नूं ठगिया करनगे ज्ञान दियां गल्लां करके, बड़े बड़े ज्ञान दियां गल्लां, ज्ञान ऐसा के दुनिया नूं एक बार जना दिया करनगे ते मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हां। वैसे ज्ञान जिहड़े ने ओह संसार नूं ज्ञान दियां, ताइयों एक कहावत बणी आ कहिंदे ज्ञान दियां गप्पां।

0: तीनों युग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार कल युग केवल नाम का ही आसरा चलेगा बाकी सारे आसरे खत्म हो जाएंगे।
1: सोई सो साची भले सकल समाला कीन।
0: सो इस प्रकार दे नाल कहिंदे ओह पिछे कही गल सच्ची है ओह गल भली है सारी दा संभाला तुहानूं करा दिता है पा अथवा तुसां समूला कर लिया याद कर लिया मैं तुहानूं दस दिता कि मेरे समय विच की वर्तारा वरतेगा।
1: अपनो अपनो राज कर तुम आयो मम धाम।
0: ब्रह्मा ने सानू कहा कि आप अपना राज करके तुसी वापस मेरे घर जा जाना।
1: कर कर करनी कल्प लग पाइयो आए आराम।
0: तो कर करके अपनी करनी कल्पां तक एक कल्प जेड़ा हुंदा है एक कलम जैसा हुंदा कि दस क युग जदों लंघ जांदे ने इस तरीके नाल अपनी करमी करके करमी आपो अपनी करके फिर मेरे कोला सेनता विच ब्रह्मा दे वाक कहने ये वाक ब्रह्म संहिता विच कहे हुए इन्होंने लए ने कि जप जिहड़ा चार प्रकार दा इस ढंग दे नाल चार वेद ये सारिया चीजा जिहड़ियां ने ये सुनाईया कलयुग ने आके महाराज नू।
1: ब्रह्मा वाक कै संगता परा पसंती जाप।
0: तो ब्रह्मा ने संगता विच कहने अगे जाके दसदे ने कि जाप लिखे ने परा बाणी पसंती बाणी ए सारियां बाणियां दे जाप।
1: मदमा वैखरी जाप रस चार वेद इस थाप।
0: फिर जेड़ी बाणी लिखी है मदमा बाणी है फिर इस प्रकार बैखरी बाणी बैखरी मुंह नाल बोल के जेड़ा जाप हुंदा मदमा कंठ विच हुंदा पसंती फिर हिरदे च परा बाणी नाभी च इस प्रकार अगे रोम रोम दा जाप है। तो इन्हां विचों किसे द्वारा नाम दे जाप दा रस लवे बंदा।
1: नारायण देव है पराका नरपसियंती इष्ट।
0: तो नारायण देव जेड़ा है ए परा बाणी दा है मालक ते जेड़ा नर है ए पसियंती दा इष्ट भाव जेड़ा देवता श्रेष्ठ इष्ट नूं कहिंदे ने। तो इस तरीके नाल कहिंदे ने कि जेड़ा देवता है ना पसियंती बाणी दा ए नर आप है नर ते नारायण दोवें विष्णु दे अवतार मन्ने हन।
1: स्वास ठहरावै नाभ कर उठे तरंगी तोज।
0: इस तरीके नाल कहिंदे जे नाभ दे विच स्वास ठहरावेगा तो इस तरीके नाल फिर कि उहदे विचों आनंद दी लहर उठदी है इस तरह दे इन्हां दे जाप आदिक दस रहे ने।
1: नाम भजन की जुगते मथुरा बख्शी मोज।
0: तो नाम भगत दी जुगती दसी है कि इस तरीके दे नाल भाई जाप करना यह कुदरती ही हो जाता अपने आप जे मूह नाल वाहेगुरू वाहेगुरू करो तां यह बैखरी बाणी हुंदिया हुंदिया कंठ विच जाप अपने चलिया जांदा अपने।
1: नाम भजन की जुगते मथुरा बख्शी मोज।
0: तो नाम भगत दी जुगती दसी है कि इस तरीके दे नाल भाई जाप करना यह कुदरती ही हो जाता अपने आप जे मूह नाल वाहेगुरू वाहेगुरू करो ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਆਪਣੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ।
1: ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਰਤ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਮ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਖੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐਵੇਂ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਲਯੁਗ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰੇਂਗਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਡਰਨਗੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੜੁੱਕੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਖਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਪਾਂ

0: गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, खीर निध हुंदा खीर समुंदर। तुहाडा जिहड़ा जस है उह तां हुण खीर समुंदर तों वी अगे लंघ चुकिया है।
1: कीरत तिहारी तों मैं कह के संदेश जो।
0: सो तुहाडी जिहड़ी कीरती है इह मैं किवें कर सकदा? तुहाडी कीरती तां बहुत, असीं किवें कह सकदे आ? तुहाडा तां जस पहलां ही इन्ना वड्डा है, इन्नी दूर जा चुकिया है कि तुहाडा खीर समुंदरों भी पार जिहड़ी कीरती लंघ चुकी है। सो इस करके ये कवि तुहानू तुहाडा जस कहण लई तुहाडे पास आया है, संदेशा लै के मेरा, तो इहनू तुसी माण आदर बख्शना।
1: जो पई सुन प्रसन्न कलगी तर है के राखियो निट मान बो कह के।
0: भाई अमृत राय नू महाराज ने बड़ा सत्कार दिता, अपने कोल बड़ा माण आदर सत्कार दे के पक्का ही रख लिया।
1: रोज दयो कर दरब खनेरा।
0: रोज इनू हुण बहुते पैसे ला दिते कि बहुत माया, इतनी माया रोज इनू मिलनी है, जां हर रोज इनू 50 रुपए मिलने हैं जां 100 रुपया, इउं रोजीना ला दिता है।
1: इह सुन सुन कर सुजस बडेरा।
0: इस तरह सुन सुन के गुरां दा बहुत भारी जस।
1: करण परब पाखा तिन केने, छंद बंद सुंदर गत लेने।
0: इह करण परब इहदी पाखा जिहड़ी है, भाव देश भाषा विच बोली विच, इह अमृत राय ने करण परब लिखिया सारा, महाराज जी ने कह के छंदाबंदी विच इहदे कोलों लिखवाया है।

0: जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिहदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंदबुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच बैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हां, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं, उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घरां च ऐ चलदा करदा कोई, सो इस करके उत्थे जाके जदों यह कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लैंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन दा टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकदे ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर इह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कट्टण वास्ते दसम दी बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ दी बाणी जिन्ने भी जाप साहब दे पाठ हो जाण, चौबी साहब दे वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तां महाराज ने ये चौबी साहब दे पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। जिहड़े लोग किंतू करदे ने चौबी साहब ते, समा आ जाएगा जब तुसी खुद ही कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि इहदी जरूरत पै जानी है जाप साहब की बाणी। फिर इसे प्रकार आईयों सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो इहदे विच भी बहुत विचार वाली चीजा ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 84 लाख जून दे मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है, जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे आ, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे आ। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी।

0: स्नान करके गुरुदा सिख पढ़े आखो सतनाम श्री, फिर अगला जीवन दसते कहते वाहे गुरु नित भजन उजाए सिख दी रहत, वाहे गुरु नित वाहे गुरु को हिरदे तारे, वाहे गुरु को अभी जो बचन कह गए केंद्र ने वाहे गुरु बिन कह जो खाना है, जे रब का नाम नहीं जपया अमृत लुट के नाश्ता कर लिया लंच कर लिया डिनर कर लिया सारा दिन लगा दिता ते रब का नाम नहीं ने जपया तो सतनाम श्री एक सत आखो
1: वाहे
0: गुरु बिना किसी घर पछताता छन गया जिन्हां दे नाल मैं गया मैं उन्हां नूं बड़े धार्मिक बंदे समझदा सां, उन्हां प्रशादा पका के मेरे अगे रख दिता उन्हां साधुआं अगे रख दिता मैं उदो बच्चा सां, ते कहिंदा जदो थाली दे विच प्रशादा बनिया ते उन्हां ने एक बार भी आख्या वाहिगुरु, ऐसे गुरबाणी दा फैसला है कि खाना खाण तो पहिलां जे अज तक नहीं करदे ते कल तो रोटी खाण तो पहिलां तैयार होके चले गया वो कहिंदा जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडामे जिहदी कृपा नाल रेशमी कपड़े रोटी खान गए प्रशादा तोड़ के फुरकी ते कोई वाहिगुरु ने आख्या जो मुंह नूं लाउण लगे ते उस रोटी विचो रोण दी आवाज आई ओ साधु दिंदा जदों रोटी रोई ते इहनां मेरे नालदिआं ने आख्या क्यों इह आवाज रोण दी क्यों आई ते कहिंदे अंदरों आवाज आई रोई मैं नाम आ किसे शुकरे दे मुंह विच पैण लगी शुकरे उत्थे लिखिया ना पापी सिउ तन गड्या पढ़दे हो सारी बात पापी सिउ तन ते थुक्कां पईआं ते रोटी रोई पापी दे अंदर चले चलिया इथों दी लंघूंगी कंध बन के बाहर निकल जूंगी लोकी मेरे ते थुक्कणगे इहदे वध कुछ नहीं उस इंसान जेड़ा देण वाले नूं भी भुलाए ओहदे अंदर चली गलत घर दे अंदर चली जदों रोटी रोई ते उह साधु कहिंदा ऐ उहनां ने डर के पंज वार आख्या वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जदों पंज वार डर के ओहदे विचों वाहिगुरु निकलिया ते उहने आख्या वाहिगुरु तेरा शुक्र है रोटी खिड़खिड़ा के हसी ते साधु पुछिया पहिलो रोई क्यों असां हुण हसी क्यों ऐ कहती हूं मैं तेरे मुंह में पी अपने आप नड़े भागा वाली समझती तेरे मुंह भजन इना सी हाथ जोड़ के बेनती है कि सतगुरु का हुक्म है कि रहतवंद गुरु का सिख अमृत वे उठ के स्नान करके महाराज का नाम जपे भाई लहना जी अज मैं नाम के उत्ते आप जी ने भजन कर रहे जेड़े कर रहे सतगुरु की ਉਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਜੇ ਵੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੱਤਰ ਹੈ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਰ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਹਰ ਬੀਜਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨਿਖਟੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਨੋਟੀ ਕਿਤਨਾ ਲੈ ਲਓਗੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੀ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਿਆ

0: अकोर मीन्स नजराना, पेटा, पेटा का भी दूंगी, पैसे भी दूंगी, कोई रब न जोड़ दे, पेटा प्राणा दी दे दूंगी। दीजे प्रमाण अकोर, अब तुम 2-4-5 रुपये बोल के पाते ना, वो किश वो रब के रंग में रत्ती हुई जीव आत्मा कहती है मैं रुपये नहीं दूंगी, मैं उन्होंने प्राणा की भेटा दे, कोई मैनू रब न जोड़ दे, रज के बोलो रब न मेरे हर प्रीतम की कोई अपनिया नहीं, अपनिया गल नहीं, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुना है सो भाई अगे बच्चे पढ़े लिखा कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा, अपने आप नू ना बुला दे मेनू प्रीतम प्यारा बुलावे, जेड़ा मेरा प्रीतम प्यारा है, जो मेरा रब है, वाहिगुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी के नाल मेनू बुला दे, कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हां तिस पे आप विचाई विचाई, मैं ओदे अगे अपने आप नू वेची दू वेची दू वेचड़ी, दो तरह का वेचना होंगे, एक होंगे गहने पाना, एक होंगे गहने पाना, गहने पाने की गल होंगी है जो तेरे को पैसे हो फिर कोई चीज छा सकता है, एक होंगे बै करना, की करना जी चीज बै कर देनी, इसे आशिक कहता वा ए तन वेची बै करी, मैं बै कर दूंगा अपने आप नू वेच दूंगा ओदे अगे, कोई जन हर स्यों दे वै जोर, हर स्यों ये गल नोट करो, मैं कल भाई साहब के जीवन बारे दो बचन प्यार दे आप जी साझे किए, एक कैश मैं उन्होंने सुनद्या सुनद्या बड़ी अजंबा बचन सुनिया, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु, अकादरता बख्शो अपने बच्चों के बल्ले ने गल किया आखो सतनाम श्री वाहेगुरु, भाई साहब कहते जसबीर सिंह जी एक कैश विच अकादरता बख्शनी आ कहते किसी मां का बच्चा घरों रुस के जाए, आखो वाहेगुरु ध्यान देना जरा भी कोई की कुछ थानू लगना, अकादरता बख्शो मां का बच्चा रुस के चले गया घरों किसी का, भाई साहब की कैश विचों मैं एक बचन पढ़िया सुनिया, कोई जन हर स्यों देव है जोर, फिर इस गल एक बार सुरत न खिलारो, कोई जन कोई आवे कोई सेवक आवे जेड़ा मेनू रब नाल जोड़ दे, ध्यान दियो भाई साहब कहते उस माता का बच्चा घरों रुस के ओदे रिश्तेदार कठे हो गए, सज्जन मित्र कठे हो गए, कहते मां सुनिया है तेरा बच्चा घरों रुस के चले गया, उन्हें घर नही मुड़ना, जे असि जाइए भी तो दस की गुरवरती है तेरे पुत्र लिये, ध्यान दो की गुरवरती है की राह लभी है कि तेरा पुत्र फिर घर नोड़ावे, आखो सतनाम श्री, मां ने एक हदायत की अकादरता बख्शो, मां कह लगी जे तुहानू मेरा पुत्र कदी घरों रुस के गया मिल जाए, आखो वाहेगुरु उस मेरे पुत्र प्यो दियां कहानियां सुनाए, दूजे का पोते वो बड़ा बली सी, ओदे वर्गा संसार में कोई गुरु ना होया ते ना कोई लिखा है ना मैं प्रगट्यो मर्द अगम बड़ा अगे की आ बरियाम अकेले का मतलब की करोगे, कि ओहो जिहा इक्को ही पैदा होया इको ही पैदा होया दुनिया से कोई ना होना है ते ना कोई गुरु गोबिंद सिंह साहब पिता जी वर्गा ना कोई होया ते ना कोई गुरु के प्यारे होना, एक नोट करो आज दो दो पैसे के मेरे वर्गे गड्डिया चुके अपने आप नू करी जांदे मेरे वर्गा ना साडे बाबे वर्गा होया ना होना, ये वचन केवल भाई गुरदास जी ने एडे भारे गुरु गोबिंद सिंह साहब पिता जी लिखे ने, वह प्रगट्यो मर्द वह प्रगट्यो मर्द मर्द अकंबड़ा मरियाम अकेला मरियाम, हाथ जोड़ के पूछा संगत ने भाई साहब जी कौन है जिंदे जी एडे बड़े प्यारे कह रहे हो, कहते ने वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर केला, उस रुसे हुए बच्चे मेरे पुत्र ओदे प्यो दियां कहानियां सुनायो,
1: ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਿਓ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਦੱਸਿਓ ਬਾਬਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਹਾਰਾ ਆਖਿਓ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਗੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਬੁੱਲ ਭਗਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਪਾਰਾਖਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ

अंदरा चो आखो स्वर्ग दे रोम रोम चो आखो आऊंगा तुहाडे घर भी गुरु तेग बहादुर साहब गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु गोबिंद सिंह साहब घर आउणगे अंदरों आज मारो मन पै

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। करो कृपा सारे आखो आद सच जुगाद है भी सच नानक जुड़ के आखो जी।

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो,

एक मिनट लिए शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

इतना तो इस मन जन्म जन्म की इस मन को की लगा जी मल लगी है मल मल मैने मैल एक जन्म दी नहीं कई जन्म दी मैला मन होया है। कई लोग मेरे भैन भरा कहते जी करिए बाणी भी पढ़ते अमृत भी छकिया नितने भी करते मन नहीं टिकता पता मैला किन्ना है पहलो शुद्ध ते करो ते शुद्ध करन ओह चीज वरतो जेड़ी गुरु ने दसी है ओ चीज ओ सबण लाओ जेड़ा गुरु ने मन धोवो शब्द लागो हरसो रहो चित लाए गुर प्रसादी सहज उपजे ए सहसा एवं इस हिस्से इतना मुक जाएंगे जेडे मैल दे बने ने गुरु कृपा करे। आओ बाबा फरीद जी दे पावन बचन सरवण करन तो पहलो मैं आप जी नूं बेनती करना घर दे विच की बोलना है पंजाबी ते रोटी खान तो पहलो की आख्या सी पांच बार बोलना बोलिया सी गुरु ने कृपा की तुहाडे उत्ते मेरा आना सफला हो गया मेरा तुहाडे जोड़े झाड़ने सफले हो गए इथे आण के गुरु नानक पातशाह दे घर दरबार लगाउण दा मेरे सतगुरु दे घर कथा कीर्तन करन दा इह फायदा हो गया कि भुली भटकी रूह दे मुंह निकल गया सतनाम श्री वाहेगुरु। मेरा सतगुरु कृपा करे अपने बच्चियां दे सिर ते हाथ फेरिया करो पलोसिया करो अपने बच्चियां नूं रोटी देण लग्यां आख्या करो हुण हुण इन्हां नूं राह पाया जा सकदा है हुण इन्हां दे अंतशकरण विच भरिया जा सकदा है सतनाम वाहेगुरु। अजे छोटे छोटे दे सिर ते हाथ पलोस के आख्या करो पुत रोटी खान तो पहलो बापू जी कहिंदे ने पांच बार कहना है सतनाम श्री वाहेगुरु। जे कि इन्हां दे बेस विच इन्हां दी नींद दे विच सतनाम वाहेगुरु आ गया ते सच जाणियो गुरु दे प्यारियो ओ दिन दूर नहीं जिदन तुहाडे बच्चे भाई तारू सिंह वर्गे बच्चे बनणगे जिदन तुहाडी औलाद भी बाबा दीप सिंह वर्गी बनूगी। मां ही सब तो वड्डा गुरु है जे मां बच्चे नूं घड़ना चाहे दुनिया की कोई ताकत बच्चे नूं बिगाड़ नहीं सकदी। मेरा सतगुरु कृपा करे मेरी बचियो मेरे वीरो गुरसिखो जेड़ा वचन आप जी दे नाल हाथ जोड़ के कीता वा अपने बच्चियां नूं गल विच लैके आख्या करो रोटी खान नाश्ता करन तो पहलो पुत एक बार आख सतनाम श्री वाहेगुरु। मेरा सतगुरु तुहाडे बच्चियां नूं सिखी बख्शे। आओ हुण जेड़े वचन बाबा फरीद जी दे अगले आप जी ने सरवण करने ने बड़े प्यार ते अदब सत्कार दे नाल कल आप जी ने सुन लिया सी जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख अपनड़े गरीबान में सिर नीवा कर। गरीबान दा पता है ना आप जी नूं अपनी चादर दी बुकल विच झाती मार अपने चोले दे अंदर झात तू की है लोकां नूं मतां देण वाले अपने अंदर झाती पहलो मार। ते फिर बापू ने यह गल अगे प्यारे बड़े वचन कहे सी फरीदा जोत है मार न मुकियां तिना ना मारे घुम आप नड़े घर जाइए पैर तिना दे चुम। अगला वचन आप जी ने सरवण करना है।

0: गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय
1: गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय गुरुवाय
0: पहले दो चार हफ्ते तीन दी पहलों की गल हो जिधर एले तो कथा खत्म करके गए फ्री माउंड एक बच्ची नाम सी मनजीत कौर आनके कहन लगी साडे घर प्रशादा छकन चलना है घर विच विपता बड़ी पई दुविधा बड़ी घर विच पई दास ने बेनती की होया कहन लगी बड़े दुखी हां एक बार आनके अरदास करो मैं क्या हुण समा नहीं मेरी धीए फिर कदी आऊं पर मैनूं इत्थे दस की होया तेरे घर विच तू अमृत छकया मैनूं इतना लगदा वा कि

0: आधार सत नाम नु आधार बनाओ, परमेश्वर की बंदगी आधार बनाओ। आओ हुण रीढ़ की हड्डी सिद्धि करो, समा दौड़ चलिया। मेरा सतगुरु कृपा करे कुछ समा नक की कुरुंबड़ी ते सुरत टका के अंदरले विचार बंद करके जप के वेखो, मेरे सतगुरु का अमृत डोलन लग पैंदा है अंदरों। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु
1: वाह गुरु। जप्या करो अमृत वेले उठ के, अमृत वेले खुराक खाया करो। सर्व रोग का औखद नाम बोलो, सर्व रोग का औखद सारिया बीमारियां दी दवाई जे सतनाम श्री वाहिगुरु। जेड़ा रब दा नाम है अवर अपाव सब त्याग गया, दारू नाम लिया छड़ दियो सारे अपा करने। अपन बड़े मिलदे ने ओ जी, औलाद आखे नहीं लगदी ते लागो गवांडी की सलाह देंदे, की करो कोई उपा करो। अपा शब्द वरतदे आ ना इथे, गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे सगल अपाव सब त्यागया अवर अपाव सब, सारे अपाव करने छड़ दिते। आख्या की कीता फिर तुसीं,

वाहेगुरु वचन नु समझो। कहिंदे ने गुरु अर्जुन देव महाराज पातशाह कहिंदे मेरा गुर मेरा गुर पूरा सुख दाता, मेरा पूरा गुरु जड़ा है कादा दाता है जी। हा सारे आखो कादा सुखा दा दाता है, सर्व सुखा का दाता सतगुर, ताकि शरणी पाईए। इथे कहिंदे ने मेरा जड़ा पूरा गुरु आ सुखा दा दाता है। ते अगले वचन वाल मैं आप जी की तवज्जो देवनी चाहना है। कहिंदे बंधन काट करे मन निर्मल, केड़े बंधन ने जिन्हां नूं कट के ओ गुरु मन नूं निर्मल करदा है, पवित्र करदा है। गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह दा जदों तुसीं इह वचन पढ़दे हो, भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया, सिमर मना राम नाम चतारे बासरे हिरदे गुर चरण बिहारे। ते अगे जाके मेरे सतगुरु कहिंदे काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, आ जे बंधन काम क्रोध लोभ मोह मन लीना। लीना दा इत्थे मतलब लीन हो गया, कादे विच काम क्रोध लोभ ते मोह दे विच मन हो गया लीन, ऐसा फस गया ऐसा फस गया। कहिंदा इत्थों ते बाहर होया ही नहीं जा सकदा, मोह ते छड्डिया ही नहीं जा सकदा। कोई कहिंदा जी काम बहुत बली है, ये छड्डिया ही नहीं जा सकदा। कोई कहिंदा जी मेरा गुस्सा हटदा ही नहीं। कोई कहिंदा लोभ मेरे को छड्डिया ही नहीं जांदा। ऐसा लीन हो गया, इहदी गुलामी विच फस गया। ते मेरे सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने काम क्रोध लोह मोह मन लीना, जदों लीन ही हो गया ते होर कोई चारा ही ना रहा। ते फिर गुरु दी शरण विच आण के इन्हें हाथ जोड़ के आख्या एक कोट पंच सिक दारा पंचे मांगे हाला। सतगुरु एक ऐसे किले दे विच मैं रह रहा जिहदे विच पंज सिकदार ने काम क्रोध लोह मोह हंकार, ते पंजे ही मेरे को आण के मामला मंगदे ने। आखो सतनाम श्री पंचे मांगे हाला, जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला। हे महाराज इना दुखी करदे ने, इतना दुखी करदे ने, मैं किसी दी जमीन भी नहीं बोई, ए पंजे आण के मेरा जो कुछ हुंदा लुट के लै जांदे ने। हर के लोगा मौको नीत डसे पटवारी। हरी दे लोगो सतसंगियो, मेनू एक एक नित नित हर दिहाड़े मन रूपी पटवारी इन्हां पंजां दी फौज लेके आण के सब कुछ लुट के लै जांदा है। ते महाराज मेरी कितों पेश नहीं जांदी, ते हुण वास्ता पाया सो उपर पूजा कर मैं गुर पै पकारिया। पहली गल ते जिन्हू ए सुध आ जाए, जिन्हू ए चेता आ जाए के गुरु के प्यारे हो मैं लुटिया जा रहा, मैं इस गल दा पता भी किन्नू लगा। आखो सतनाम श्री, फिर एक बार आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। एक थां ते तीसरे बापू ने वचन कीता एकाग्रता बख्शो इस देही अंदर पंच चोर वसे। बोलो इस देही अंदर केड़े केड़े जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, ए पंच चोर वसदे ने इस देही विच। मगर पता किन्नू, घर दे विच ते कोई चोर आ जाए ते ओदी रबट लिखाउण जाने आ जी मेरे घर चोरी हो गई चोर आ गया। हालांकि की चीज चुकी, टीवी चुक लिया $500 दा हो $1000 दा हो ओदी रिपोर्ट ते कराने आ। मगर जिस घर विच 24 घंटे पांच चोर लगे ने, कदी एदी रिपोर्ट लिखाउण गए हो? कदी आख्या जे जाके हर के लोगा मौको नीत दसे पटवारी? कदी रोए हो गुरु दे अगे? कोई बच्ची दसे, कोई भरा दसे, कोई गुरमुख प्यारा दसे? जितना गुरु नानक पातशाह दी बाणी ने आख्या उपर पूजा कर मैं गुर पे पकारिया। मैं बाहां खड़ लिया उचिया, बाहां उदो खड़िया करी दिया जदों हार जाइए। आखो सतनाम श्री, चेता करियो जदों जंग हुंदी आ दोवां पासिआं तों उन्ना चिर गोली चलती रही, जो दोवां पासिआं तों बाहां ना कोई खड़िया करे। जंग दा असूल आ कि एक पासे वाला बाहां खड़िया कर दे ते दूसरे पासे नूं जंग बंद करनी पैंदी। इथे भी बाबा कबीर कहिंदे जदों मेरी कोई पेश ना इन्हां पंजां दे नाल गई। ए पंज बड़े वड्डे महाबली गुरबाणी दे विच दसे ने, काम क्रोध महाबड दुंदर ते मन मवासी राजा। उथे मन राजा बढ़ के बिता, बड़े बड़े सूरमे ने काम ते क्रोध किसे नूं अंदर लगन ही नहीं देंदे।
ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਈ ਉੱਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ, ਭੁਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਤਰਾ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਾਵਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਪਿਆ, ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੌਕੋ ਨੀਤ ਡਸੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਉੱਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ ਮੈਂ

कुर्बानी तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किश दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा।

पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी पावन चरण शरण विच आप जी वडभागी रूहां आए हो। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह कृपा करन ए जिहड़ियां घड़ियां हुण आपां सतगुरु गरीब नवाज दी चरण शरण विच गुजारनियां ने, वैर विरोध तों उत्ते उठ के, ईरखा दवैत चुगली निंदा तों उत्ते उठ के अपने आप नूं निमाणे नताणे गुरु नानक दे सिख बन के अवदेश रूपी जल अमृत रूपी जल अपने झोली विच पवाण लई, अंतशकरण विच सतगुरु दा अवदेश भरन लई निमाणे होके नताणे होके सतगुरु दी चरण शरण विच बैठीए। ज्यो जीव आत्मा सतगुरु दी चरण विच आउंदी, बाबा कबीर जी दा एक वचन बड़ा प्यारा है, कबीर साधु संग प्राप्ति कदों हुंदी, सत संगत दी प्राप्ति कदों हुंदी जीव आत्मा नूं। साहब कहिंदे साधु संग प्राप्ति लिखिया होए ललाट, लिखिया होए ललाट, जे मथे दे उत्ते पहिनो लेख लिखे होण, मथे दे उत्ते तकदीर ते ए अक्षर उकरे होण कि एदे कर्मां विच सतसंगत है, ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दी पावन गुरबाणी फरमान करदी है, फिर जीव आत्मा नूं सतसंगत नसीब हुंदी। ते सतगुरु नूं पुछिया, महाराज जे मथे दे लिखे अनुसार जीव आत्मा नूं संगत मिल जावे ते फिर गां प्राप्ति की हुंदी आ? कहिंदे ने जिहड़े सतसंगत विच आ गए सुते सिद्ध उन्हां नूं प्राप्ति आ। मुक्त पदार्थ पाईए, बोलो मुक्त पदार्थ पाईए, गज के आखो मुक्त पदार्थ पाईए, मुक्ति दा पदार्थ झोली दे विच पैंदा है। ते ठाक ना अव घट घाट, ओ जिहड़ी अव घट घाटी जाणी आ जीव आत्मा ने, ओहदे विच इहनूं कोई हथ दे के रोकदा नहीं, जिहड़े जीव सतसंगत करदे आ। धन गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी कहिंदे, मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया, ओह तर गया जिहड़ा सतसंगत विच आ गया। बाबा कबीर जी एक थां होर कहिंदे, कबीर संगत करिए साध की, कबीर संगत करिए साध की, साधे होए दा नाम साधु आ, दुध पीने मजनू दा नाम साधु नहीं, पखंड करन वाले दा नाम साधु नहीं, आटा देन वाला कौडियां बना के जल देन वाले दा नाम साधु नहीं, साधे दा नाम साधु आ। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहिंदे ने, कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाहो, अंत काल ते नबेड़े करा दे, अंत काल ते जीव दा छुटकारा करा दे। अगे साहब जी कहिंदे, साकत संग ना कीती जाते होए विनाहो, विनाहो दे अक्रिय सने विनाश, एहो जे जीव दी किसे दी संगत विच ना बैठियो भाई जिहदे नाल इस मुबारक जीवन दा विनाश हो जाए। उन्हां दी संगत विच रहो जिन्हां दी संगत विच

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनु कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावा पहाड़ पहाड़ जिडियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावा वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरों ता आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगुण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगुण यारी कंत न पावे बोलो अवगुण यारी सारे बोलो जरा अवगुण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगुण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा उदे सुभा नू इहने जाणिया ही नहीं कि मेरा पति ते उहनां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारिओ मेरे सतगुरु दे चरणां विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यार वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मिलाप हो जाए वो

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज का पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वडियाई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया ए

कुदरत कवन हमारी ज्यो बलावे त्यो बोला स्वामी, कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की आत प्यारी साध संग नानक जस गायो।